0: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.
2: I have

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 8 o'clock.

0: आएगा वहां खड़ी हो जाएंगी।
1: आपने वो बना भैंस बना,
0: ये पानी नहीं, घोड़ा कहा हमने, लंबी रेस का घोड़ा, जो पानी जहाँ मिल जाता है अच्छा फ्रेश पानी, ग्रीन पैस्चर्स में दौड़ता हुआ लंबे बालों के साथ, यू नो हमने सारा फील भी कर लिया उसको। अभी एक फिल्म आई है उसमें घोड़े का नाम भी आजाद है, वो क्या काला उन्होंने कमाल घोड़ा अरबी कहीं से उठाया है, क्या उसकी उठान है और क्या उसके बांकपन है उसकी,
1: मजेदार। ये कौन सी फिल्म है आजाद लाला?
0: ये फिल्म है, नाम है उसका आजाद।
1: अच्छा ठीक है, नहीं आजाद लाला अब तो काफी बेहतर हूँ मैं, और इतना अच्छा लग रहा है आजाद लाला, बल्कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा हम कैसे छोटी छोटी चीजों को जैसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बटन बंद करते भी मुश्किल हो रही थी, चम्मच उठाना भी, मुंह खोलना, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, और ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। लाइक जब हम अपनी दी स्मॉल थिंग्स वी जस्ट इग्नोर,
0: अगर आप सीखना चाहें ना और अपनी औकात जानना चाहें, पिछले दिनों वैसे ही मेरा उंगली ऊपर से ना स्किन कट गई, तो एक तो वो खून बहुत आ रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, तो किसी चीज़ के साथ लग गया तो एकदम, तो वो पे जाए ही ना, मैं जितना उसको रोकूं वो करे, फिर खैर मैंने उसको बांध दिया। फिर उसके बाद बर्तन धोते हुए, हाथ मुंह धोते हुए, वुजू करते हुए, स्विमिंग करते, हर वक्त उसी का ख्याल रहता था कि और वो और उसकी जलन भी जानी, क्योंकि वो स्किन का कोई ऐसा पार्ट था, वो पानी गर्म लगे तो जलता था, ठंडा लगाए तो जलता था, तो दो तीन दिन तक ना पता चला कि इंसान, ये कहते हैं जी कुछ दिनों की आग होगी, अरे भाई आग को छोड़ो, थोड़ी सी स्किन उतरी है, हवा पास से गुजरती है तो इतनी तकलीफ हो रही थी तो ये लोग, हम लोग ना देखते सोचते समझते नहीं है बात करने से पहले, और दुनिया के जहन्नुम में रोज़ जल रहे होते हैं हम, और उसी की तपिश में लोगों ने क्या किया, अभी तिक्के अपने बना लिए हैं, थोड़े थोड़े तिक्के बना के खाते रहते हैं, आग लगी हुई है, अंगार पखे हुए हैं, हवा शवा लगा देंगे, जो ज्यादा डेढ़ सियाने उन्होंने साथ पंखा लगा दिया कि वो परमानेंट हवा लग जाए, हाथ के भी तकलीफ नहीं करना चाहते ना, ताकि यू नो वो ट्रिगर थंब नहीं हो तो जो सारी चीजें टेंडनाइट सारी चीजें भी ठीक हो सकती हैं, साथ बंदा एक्सरसाइज ही कर ले हाथ की, नहीं जी उन्होंने कहा नहीं हम पंखा लगा लेंगे।
1: लेकिन वाकई हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हर इन चीजों पे, लाइक वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग।
0: शो ने हेल्प की साथ जो करनी चाहिए उसको
1: बहुत ज्यादा आजाद अल्लाह, मैंने आपकी जैसे पिछले शोज आपके जो अभी गुजरे हैं उनको सुनना शुरू किया,
0: वो कैसे थे, बहुत अच्छे शो थे, पिछले दो बहुत ही अच्छे थे।
1: हाँ जी बिल्कुल, उनमें से एक मैंने सुना है, अभी दूसरा रहता है मेरा, तो
0: सुना आपने जिसमें कहा जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, और आपने कहा जो कुछ पूछेंगे मैं वो सब बताऊंगा, और उसका रास्ता भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पूछेंगे आप, बजाय इसके कि सिर्फ हमें कहते रहे कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, आपने ये पा लिया वो पा लिया, कैसे पाया, क्यों पाया, क्या हुआ, वो पूछें, रास्ता कौन सा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछें, तो उसका जवाब आएगा। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ, यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे, स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: इसमें एक और मायना भी है, असल में कासित कहते हैं गैर इंसाफी करने वाले को, कासित गैर इंसाफी करने वाला, जुल्म करने वाला, और मुकसित कहते हैं जो इस बात का पूरा एहतमाम करे कि कहीं गैर इंसाफी ना हो जाए, उसको मुकसित कहा जाता है। तो अदल में असल में मुस्बित मायने हैं और मुकसित में मनफी मायने हैं, यानी गैर इंसाफी से बच के रहना, उसको किस्त कहा जाता है। ओके, एक ही आयत में इस्तेमाल हो गया, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ। इस आयत को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत मज़े की हिकमत है, ये बहुत बहुत खूबसूरत हिकमत है। इस तरह सोचें कि तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, ए बी और सी, ठीक है, तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, और ए और बी की लड़ाई हो गई, शदीद लड़ाई होगी दोनों की। अल्लाह ताला कह रहे हैं, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا। अगर ए और बी की लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार कुटाई पर आ जाए, कत्ल तक नौबत आ जाए, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। किससे कहा जा रहा है सुलह करवाओ, ए से या बी से या सी से? सी से कह रहे हैं कि ए को बिठाओ और बी को बिठाओ और अब सुलह कराओ। तो तीन ग्रोह हो गए, ठीक है। अच्छा, अब लड़ाई हुई, सी ने कहा चलो आ जाओ बैठ जाओ, खत्म करो ये बात, तुम सब मुसलमान हो, हाथ मिलाओ, यू नो नेगोशिएशन करो, बात हो गई, सबने हाथ मिला लिए। ये इस तरह का जो बैठना होता है, ये पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है? इख्तिलाफ है क्या? प्राइवेट होता है, क्योंकि इसमें इस बहुत नाजुक बात करनी होती है, इख्तिलाफात करने होते हैं, आवाज़ें ऊंची होंगी, गुस्सा होगा, ऐसे ही नहीं तो सुलह हो जाती, सुलह में टाइम लगता है, आर्बिट्रेशन होती है, तो ये बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है, ये प्राइवेटली होता है, और उसमें ये अलमजालिस बिल अमाना, जो बहस इसके अंदर हो रही है या गालम गलोच तक भी बात आ गई है या जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे। और वो जो सी है ना, वो कहता है देखो हम इस कमरे से हम उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक सुलह ना हो जाए, हमने ये मसला हल करना है, फिर हमने यहाँ से निकलना है, और जो बात यहाँ अंदर हमने डिस्कस की है वो बाहर हम एक ही बात कहेंगे, हम सब एक ही सफ़े पर हैं इस सारी निगोशिएशन के बाद। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला कहते हैं कि सुलह करवा दी दोनों के दरमियान, तो सी बड़ा खुश कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश से अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और ए और बी की लड़ाई ख़त्म हो गई, ठीक है। अब अल्लाह ताला कहते हैं फ़हिम बगत इहदाहुमा अलल उखरा, और फिर उसके बाद भी अगर उनमें से एक दूसरे के ऊपर बगावत फिर शुरू कर दे, मीटिंग से बाहर निकले, ए और बी अंदर गले लगा चुके, बाहर निकलते ही ए कहता है बड़ी ज्यादती की उस मीटिंग में हमारे साथ, कोई एक बात नहीं सुनी हमारी, सी जो है वो बी के साथ मिला हुआ था और बहुत गलत बातें की हैं, और उसने अब बी को भी इल्ज़ाम लगाया और किसको और इल्ज़ाम लगाया, सी को, और निकल के उसने बी को फौरन थप्पड़ मारा मुंह पे, नहीं मानता मैं यादत। और सी हैरान परेशान, यार अंदर अभी हमने बात की थी, सब चीज़ें तुम लोग मान गए थे, ये क्या हो रहा है? फहम बहुत अहदा हुआ आलन उखरा। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कहते हैं फ़कातिलु लती तबगी हत्ता तफी इला अम्रिल्लाह, जिसने बगावत की है, कि हमारे अल्फाबेट में किसने बगावत की थी, ए ने, तो अब कहा बी और सी मिलके अब लड़ाई करो, किसके साथ, ए के साथ, जब तक कि वो वापस अल्लाह के हुक्म तक वापस ना आ जाए, लड़ते रहो जब तक वो कहे अच्छा चलो चलो चलो अच्छा ठीक है सुलह करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, जब तक वो सरेंडर ना करें और सुलह के लिए तैयार ना हो जाएं, तब तक सब मिल के उनसे लड़ो, लड़ो उनके, कातिल उल्लती तबगी। लेकिन पहली जो मीटिंग थी ना, उसमें जो करारदार बनाई गई जिसपे सबने साइन किए या जिसपे सबने हाथ मिलाए, उसको पता है क्या कहा गया अल्लाह ताला के कलाम में, अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म। यानी मुसलमान अगर एक बात मान जाएं, एक दफ़ा इकरार कर लें, तो उस इकरार की क्या हैसियत है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह का हुक्म। हत्ता तफ़ीआ इला अम्रिल्लाह, यानी लम यकुल हत्ता तफ़ीआ इलल करार बैनहुम, अपने जो आपस में फैसला किया था उस पर वापस आ जाए, नहीं अल्लाह के हुक्म पे वापस आ जाए, या अल्लाह जो फैसला किया था वो अब अल्लाह का हुक्म की हैसियत रखता है। अच्छा, अब बी और सी लड़ाई कर रहे थे ना, और फिर ए दोबारा कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो एक और मीटिंग करते हैं, इस दफ़ा नहीं करूँगा। अब दोबारा कमरे में बैठ गए, दोबारा मीटिंग हो रही है, लेकिन अब कुछ फ़र्क है। अगर आप सी हो तो क्या आपके जज्बात में कोई फ़र्क है? क्या फ़र्क है? आपको अभी थोड़ा गुस्सा आया हुआ है किसके ऊपर? ए के ऊपर। पहली दफा जब आप मीटिंग में बैठे थे तो ए और बी दोनों आपके लिए बराबर थे, दूसरी दफा अभी 15 मिनट पहले उससे आप लड़ रहे थे, तो आपके जज्बात अभी भी हिले हुए हैं कि नहीं? तो क्या ऐन मुमकिन है कि इस दफा जब आप फैसला करोगे तो ज्यादा इम्कान है कि आप किसके खिलाफ करोगे? ए के खिलाफ। अब अल्लाह ताला की हिदायत सुनना, कहते हैं फ़कातिल उल्लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत, और अगर वो वापस आ जाए दोबारा कमरे के अंदर, फ़असलिहू बैनहुमा बिलअदल, उनके दरमियान अब सुलह करना अदल के साथ, अदल के साथ। शुरू में मैंने कहा था अदल और किस्त में फर्क है, क्या फर्क है? अदल कैसे होती है? खुलेआम होती है। इस दफा दरवाजा बंद करके ये मीटिंग नहीं होगी, इस दफा ये मीटिंग यूट्यूब लाइव पे होगी, चाहे वो अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह की बात हो या वो मौलाना मौदूदी की हो या फिर हमारी जो जो जो और तफसील अमीन अहसन इस्लाही साहब की हो या अनवारुल बयान हो और हो, जिन जिन जो भी तफसील मैंने उर्दू में पढ़ी हैं उनमें मुझे ये एक मुश्तरक चीज़ नज़र आई। लेकिन अरब के हाँ इस तरह समझ लें कि कोई वो कैमराज होते हैं ना जिनमें जूम लेंस होती है, वो कोई एक फूल पे जाके वो ऐसे जूम करे कि उस फूल की बारीक तरीन शाखें आपको एक एक पेटल की नज़र आए, फिर वो उसकी फ़ोटो खींचता है। तो एक फोटोग्राफर है वो पूरी वादी की फ़ोटो खींच रहा है बहुत खूबसूरत सी, और एक फ़ोटोग्राफर है वो जो एक एक फल के एक एक पत्ते की तस्वीर खींच रहा है। ये फ़र्क है मेरे नज़दीक अरब तफासिर में और हमारी तफासिर में। तो ये कहना कि ये उससे बेहतर है या वो उससे बेहतर है ये गलत है। उनका कल्चर ऐसा था, वो एक एक बारीक चीज़ पर उनकी नज़र होती थी। लेकिन अगर आप हमेशा जूम इन करते रहोगे ना तो क्या होगा? आपको इस बात का ख्याल नहीं रहेगा कि आप किस वादी में हो, और अगर आप बाहर बाहर से वादी की बात करते रहोगे तो किस बात का लिहाज नहीं रहेगा कि इसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे मोती, क्या क्या खूबसूरत चीज़ें पाई जाती हैं, यू नो? तो इस माइक्रो व्यू मैक्रो व्यू है ना। तो मैं चाहता हूं अब कि ये दुनियाएं एक दूसरे के साथ मिलें और हमें उन दोनों का जायका हासिल करने का मौका मिले, खासकर कुरान के हिसाब से। तो अब इस सेमिनार में अभी तक आपने नोट किया होगा हम एक माइक्रो व्यू ले रहे हैं, एक लफ्ज़ पे फोकस कर रहे हैं, एक छोटे से तकाबुल पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर उन्होंने बहुत एहतमाम किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उससे मेरे नज़दीक तो उसमें बहुत हिकमत है, बहुत फ़ायदा है, और उसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ओके, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا, مدين کی طرف ان کا بھائی شعیب, ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا۔ کبھی کبھار قرآن نے انبیاء کے بارے میں جب ان کو اپنی ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور سورۃ الشعراء میں خاص کر اذ قال لهم اخوهم نوح, جب نوح ان کے بھائی نے ان کو ان سے کہا, پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودْ, ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا, اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالح, ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا, اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لوط, ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا۔ سورۃ الشعراء میں بار بار بھائی بھائی بھائی اور بھائی کا ذکر ہے, لیکن شعیب کے بارے میں کہا اِذْ قَالَ لَهُمْ شعیب, جب شعیب نے ان سے کہا, کیا چیز نکال دی؟ بھائی کا ذکر نکال دیا۔ عجیب بات یہ کہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا, ایک ہے مدین اور ایک ہے اصحاب الایکہ, اور مدین کی قوم سے وہ تھے لیکن اصحاب الایکہ سے وہ نہیں تھے۔ تو ایک مقام پر اور مقام پر شروع میں آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں, ہود میں, عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو مدین کو ان کے بھائی شعیب سے اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا, الا مدینہ اخاہم شعیبا۔ لیکن جہاں ایک مقام پر اصحاب الایکہ کا ذکر آیا, کیونکہ وہ اوریجنلی اصحاب الایکہ سے نہیں ہیں, تو وہاں باریک دقت الاستعمال وہاں سے اخوہم نکال کے اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ یہ چیزیں لگتی تو بہت آسان سی آبزرویشنز ہیں, لیکن اگر آپ سوچیں ذرا کہ بار بار میں اس بات کی اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, قرآن ہمارے لیے کتاب ہے, لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتاب نہیں تھا, کلام تھا, اور کلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھیں, میں کہہ نہیں سکا, ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان چیزوں کا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں۔ ابھی بات کرنے میں اور کتاب لکھنے میں, بات کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے۔ लिखने में इंसान को सोच के एक जुमला पूरा मुरतब करना होता है, और मुरतब करने के बाद वो ये भी सोच सकता है कि ये लफ्ज़ सही नहीं, इसकी जगह मैं कौन लफ्ज़ लिख दूँ। या हो सकता है आपने पूरा पैराग्राफ लिखा, पूरा मजमून लिखा, और बाद में दोबारा उसको पढ़ा और ख्याल आया कि एक दो जुमले एक ही बात कर रहे हैं, उनको मैं जमा करके मुख्तसर तर अंदाज में इनको एक ही बना दूँ। फिर आपको ख्याल आया कि मैंने ये बात तीसरी बात कही थी, इसको दूसरा होना चाहिए, दूसरी बात को तीसरा होना चाहिए, थोड़ा एडिटिंग कर दूँ इसकी। होता है कि नहीं? इस चीज़ को इंग्लिश में हम कहते हैं एडिटोरियल प्रोसेस, प्रूफ रीडिंग, यही होती है ना। आप कुछ लिख रहे हो, फिर आप उसको एडिट कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। आजकल एडिटिंग का ज़माना तो कम है, क्योंकि हम कुछ लिखते हैं फिर सेंड कर देते हैं, लेकिन शुक्र है अब अनसेंड भी आ गया है, राइट? तो खैर, बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिखते वक्त आपके पास टाइम होता है, और आपके पास सोचने का, रिव्यू करने का, उसको दोबारा दोहराने का, उसमें तब्दीली लाने का मौका होता है। लेकिन बोलने में इसमें से कुछ भी नहीं होता। बोलने में जो मुंह से निकला वो फाइनल है, वो वापस नहीं लिया जा सकता। लिखे हुए को आप मिटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कागज़ को फेंक सकते हो, लेकिन जो मुंह से एक दफ़ा निकल आया और किसी ने सुन लिया, तो आप ये नहीं कर सकते नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नहीं कुछ और कुछ और, नहीं कर सकते। क़ुरान जब नाजिल हुआ और दुनिया में फैला, और अरब में जो फैला, कुरैश में जो फैला, वो किताब के ज़रिए से नहीं, कलाम के ज़रिए से फैला। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जो बात कह दें उसमें अब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो जैसे ही कहते हैं लोग याद कर लेते हैं, और फिर याद करके औरों को सुनाते हैं, फिर वो याद कर लेते हैं। तो अगर एक सूरत में भी एक लफ्ज़ यहाँ मेरे से अखोहम रह गया, यहाँ अखोहम होना चाहिए था, टू लेट, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अब हम 1500 साल बाद वही उसी कलाम को, जो कलाम था उसको हम किताबी शक्ल में देख के, अब हम एक एक बारीक लफ्ज़ की दिक्कत के बारे में बहस करने के, ये लफ्ज़ यहाँ पर है और ये लफ्ज़ यहाँ पर ऐसे है, तो हैरानगी होती है कि इंसान की सलाहियत में जो बात करना होता है ना, उसमें इतने लेवल का लिहाज रखना कि यहाँ पर ये लफ्ज़ होना चाहिए, यहाँ पर ये लफ्ज़ होना चाहिए, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और जैसे जैसे हम इस सेमिनार से गुजरेंगे, ख़ासकर इस सेक्शन में और इससे अगले सेक्शन में, 4 और 5 में ख़ासकर, ये बात आप पर बहुत ज़्यादा वाजह हो जाएगी कि ये इंसानी सलाहियत से बहुत आगे की चीज़ है, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब इसमें बाय द वे, क्योंकि जो मग़रिबी तहजीब है उसमें भी इस्लाम बहुत पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड में इस्लाम पढ़ा जाता है, बॉस्टन में पढ़ा जा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ा जा रहा है, ऑक्सफोर्ड में इस्लाम पे PhD होती है, मुस्तशरिकीन इन्हें कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट ना, तो वो ईमान के नुक्ते नज़र से इस्लाम को नहीं पढ़ते, उनके उनका वो खुदा को नहीं मानते उनकी, क्योंकि वो PhD थीसिस कर रहे हैं, तो उनका नज़रिया ये होता है कि ये एक तारीखी फिनोमेना है, और इसको हम किसी तरह से बयान करें कि ये कैसे हुआ, इस्लाम क़ुरान क्या है, कहाँ से आया। तो मुख्तलिफ किस्म के वो थीसिस पेश करते हैं, उनमें से कोई कहता है कि क़ुरान जो है ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको जमा करके और इसको एक किताबी शक्ल दी, वो एक उसमें पूरा वो PhD थीसिस लिख देगा, उसको डिग्री भी मिल जाएगी। कोई और आके कहेगा कि ये बाद में जो है ये डेवलप हुआ, और उसमें शुरू में ये सूरतें नहीं थी, बाद में ये सूरतें आ गई, और उस पर वो पूरी PhD थीसिस लिख देगा। तो ये क्योंकि उनके जहन में ये बात आ ही नहीं सकती कि कोई चीज़ जो याद की गई थी वो वैसी ही रहे जैसे पहले थी, और ये इनके जहन में इसलिए नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं इसको, इस गेम को अमेरिका में टेलीफोन कहते हैं, अगर मैं आपके कान में चुपके से कुछ कह दूं, और मैं आपसे कहूं आप चुपके से इनके कान में कह दें, और आप उनके कान में कह दें, और आप उनके कान में कह दें, और इस तरह हम पूरे क्राउड से गुजर के आखिरी बंदे से मैं पूछूं भाई क्या कहा था, तो क्या होना है? मैंने बच्चों के साथ कई दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने एक पहले बच्चे से कहा था बाब ने जो को मुक्का मारा, उसने दूसरे के कान में, तीसरे के कान में, चौथे के कान में, जब 50वें बच्चे तक पहुंचे मैंने पूछा क्या कहा था, कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद कहने का ये है कि जब इंसान बात करता है और बात के ज़रिए से चीज़ फैलती है ना, तो उसमें क्योंकि हमारा जो हाफ़ज़ा है वो इंसानी हाफ़ज़ा, उसमें कमज़ोरी आ सकती है, शायद मुझे कोई बात याद नहीं रही, शायद मुझे कोई लफ्ज़ याद नहीं रहा, हो सकता है, तो उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा है। अगर कुछ कोई चीज़ लिख ले, वो लिखी हुई चीज़ मुझे मिल जाए, तो उसमें जो पुरानी असल बात थी उसका रिकॉर्ड ज़्यादा काबिल कबूल है, वो ज़्यादा रिलायबल है, काबिल एतमाद है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, और जो बात ज़बानी कही गई है वो काबिल एतमाद कम है। और हमारा जो दीन है कुरान ख़ासकर, उसकी असल में किताबत नहीं है, ठीक है, वो मुरतब हुआ है किताबी शक्ल में और उसको जमा किया गया और मुसहफ़ बनाई गई, लेकिन मुसहफ़ तो एक आध थी, या पूरे एक गांव में, पूरे एक शहर में एक आध मुसहफ़ आपको मिलेगी, लेकिन हज़ारों की तादाद में सहाबा कुरान को याद कर चुके, औरों को याद करा रहे हैं, फिर वो और याद करा रहे हैं। उन सारों के पास मुसहफ़ नहीं है, कुरान की एक कॉपी नहीं है उनके पास, वो दिल से याद कर रहे हैं, और वो फैल रहा है और फैल रहा है और फैल रहा है और फैल रहा है। जो चीज़ ज़बानी याद करके फैली जाती है ना, फैलाई जाती है, उसमें तग़य्यीर का और उसमें हाफ़ज़े की कमज़ोरी की वजह से ऊंच नीच का इम्कान ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, ज़्यादा है। और जितना वो फैलेगा, कितना इम्कान है कि और तग़य्यीरात होंगी, और यानी इनके पास इस सूरत में ये लफ्ज़ था या ये लफ्ज़ था, ये सूरत पहले थी या ये सूरत बाद में थी, ये याद यहाँ पे थी वहाँ पे थी, इसका इम्कान बढ़ता चला जाएगा। जितने और लोग हिफ्ज़ करेंगे उतना ही उसका इम्कान बढ़ता चला जाएगा। और यही मग़रिबी ज़हन का एक खाका है कि तारीख जो है ना, जो रिलायबल तारीख है, जिस तारीख पर हम एतमाद कर सकते हैं कि ये वाकई उस वक्त की चीज़ है, वो लिखी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के मुआवजे का कोई, उसके हिफ्ज़ का कोई एतबार नहीं, ये उनकी ज़हनियत है। अब उन्होंने साइंस का भी इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको को पुराना कोई नुस्खा मिल जाए कुरान का, या उन्होंने जैसे वो यमन में उनको एक मिला, तो उन्होंने उसकी वो कार्बन डेटिंग करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं कि ये किस साल का है, कितना पुराना है, ये उसके कीमियाई उसका एनालिसिस करके वो निकाल लेते हैं, ये 8 सदी पुराना है या 12 सदी पुराना है या 1000 साल पुराना है, वो उसको अब उसका तजिया वो कर सकते हैं। उसकी वजह से अब जब वो कुरान के पास आते हैं तो ये कहते हैं ये तो इसके जो नुस्खे हमें मिलते हैं, वो तो मुझे एक नुस्खा कहीं यमन में किसी पत्थर के नीचे मिल गया, कोई पुराना, कोई वहाँ पे मिल गया, कोई वहाँ पे मिल गया, लेकिन असल क्या होगा कोई नहीं कह सकता। मेरे जहन में ये जो सवाल था, मैंने बहुत सारे मुस्तशरीन से पूछा, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आपके नज़रिए के मुताबिक तो एक साल के अंदर ही लाखों कुरान होने चाहिए थे, एक नहीं लाखों, क्योंकि अगर लाखों लोगों ने याद किया है और हर एक के हिफ्ज़ में कोई ना कोई इधर उधर खलल है, तो इसको कुछ और याद होगा, उसको कुछ और याद होगा। और उस वक्त तो ऐसे नहीं, हम समझते ना खिलाफत की हुकूमत जो है उसका बड़ा कंट्रोल था, ऐसे थोड़ी है कि वो फ़ोन उठाए और कहा है इसने क्या याद किया है या कैमरा ऑन करो, वो तो हज़ारों मील के फासले पर हैं, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कौन किसको क्या सिखा रहा है। ये तो अब एक कुदरती तौर पर कुरान जल्दी जल्दी फैल रहा है। एक किताब का लिखना भी उस ज़माने में कितने दरख्त काटने पड़ेंगे, दरख्तों से कितनी देर लगेगी उसको कागज़ बनाने में, फिर कितनी देर लगेगी स्याही, और कितने सलाहियत रखते हैं लिखने में, प्रिंटिंग में इतनी देर लगती है, लिखने में कितनी देर लगेगी, और उससे कहीं तेज़ी से कुरान ज़बानी फैल रहा है ना। और अब वो ज़माना, और अब 1500 साल हो गया, इस वक्त तक तो कुरान की करोड़ों कॉपियाँ होनी चाहिए थी जिनमें हर एक में फ़र्क हो उनके नज़रिए के मुताबिक। और फिर सवाल ये पैदा होता है, मैंने टेक्सस में की थी, मैं टेक्सस में था तो कुछ ईसाई हजरात भी आए हुए थे, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि इंटरनेट ख़त्म, लाइब्रेरीज तमाम की तमाम बंद, किसी किताब का किसी को एक्सेस नहीं है, सब गायब, और अब मैं यहाँ इस शहर के रहने वालों से कहूँ आप बाइबल को दोबारा से रिप्रोड्यूस करें, इस शहर के रहने वालों, चलें थोड़ी आसान कर देता हूँ आपके लिए, मैं पूरे अमेरिका के खित्ते को जमा करके कहता हूँ, आप पूरे अमेरिका के सारे शहरों को ले लें, सारे स्टेट्स को ले लें, चलें कैनेडा को भी जमा कर लें, मैक्सिको को भी जमा कर लें, आप पूरी बाइबल को दोबारा रिप्रोड्यूस करें। और फिर मैं एक और चैलेंज देता हूँ, जो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको भी अब दोबारा लफ्ज़ बाय लफ्ज़ रिप्रोड्यूस करें। और मैं कहता हूँ मुझे सैकड़ों मील नहीं चाहिए, मुझे एक मील का फासला चाहिए, आधा मील कर लें, चलें रुबा मील कर लें, इस मस्जिद का रुबा मील, और हमारा प्रोजेक्ट ये है हमने कुरान को दोबारा रिप्रोड्यूस करना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे इस कुरान की हिफाजत की है, सुभान अल्लाह, अल अजीब मिन अल क़ौल। इसीलिए कुरान ने जब कहा ना कि कुरान की हिफाजत की गई है, तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, अल किताब नहीं कहा, अल ज़िक्र कहा। अल ज़िक्र क्या है? याद दहानी, ये भी है, जो चीज़ याद की जाती है उसको भी ज़िक्र कहते हैं। अल मज़कूर भी ज़िक्र है, المذکر بھی ذکر ہے، مصدر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی. اور یہی بات اور عجیب ہو جاتی ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے اور جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں ہمیشہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی یہ ریکارڈنگ میری لے کے اس کو کتابی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس میں بہت بھونڈی اردو ہوگی، اس کو بہت فکس کرنا پڑے گا. جگہ جگہ میں نے بات دہرائی ہے، کبھی آدھا جملہ چھوڑ دیا، کبھی یہ کہہ دیا، کبھی وہ کہہ دیا، وہ سب تو نکالنا پڑے گا نا آپ کو. قرآن نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی اور پچھلی مثال میں نے کہا اخوہم یہاں نکال دیا وہاں ڈال دیا، کیسے ممکن ہے؟ اور یہ دو آیات سورۃ الانعام کی دو الفاظ، انگلش میں کہتے ہیں کم آن کم آن، اردو میں کہیں گے ادھر آؤ، آؤ ادھر، آؤ ادھر کے لیے عربی میں دو الفاظ ہیں اور بھی ہیں لیکن دو الفاظ ہیں، ہلما ہلما، اور دوسرا ہے تعالو تعالا. اگر آپ عمرے پہ گئے ہو تعالا بہت سنیں گے، تعالا یا رفیق، تعالا لہنا، رائٹ؟ تو ہلما ہے اور تعالا، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک آیت میں کہا ہلما شہدا کا شہدا کم، اپنے شہدا سے کہو آؤ ادھر، آؤ ادھر، اور ان سے کیا کہو الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا، اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے، بلاؤ ان کو، ان سے کہو آؤ ادھر، اور آؤ ادھر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ہلما. دوسری طرف کہا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، اور تم کہو، رسول سے کہا آپ کہیے تعالوا آؤ ادھر، میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے. یہ سورۃ الانعام میں دو مرتبہ آؤ ادھر کا لفظ، ایک لفظ 150 آیت میں ہلما، اگلی آیت میں تعالو. کیا فرق ہے؟ فرق تعالو جو ہے نا یہ اصل میں آیا ہے علو سے، علو، علو کہتے ہیں اونچائی کو، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے ان اللہ کان علیا کبیرا وہو العلی العظیم، سورۃ آیت الکرسی وہو العلی العظیم. تعالو اصل میں کہتے ہیں، فرض کریں اگر میں یہاں نیچے کھڑا ہوں اور میں آپ کو بلاؤں تو آپ اور میں ایک ہی سطح پر ہیں نا، تو وہ ہوگا ہلما. اگر میں اونچا ہوں اور میں آپ کو یہاں اوپر بلا رہا ہوں، علو کی طرف بلا رہا ہوں، تو لفظ، اصل لفظ، صحیح لفظ، زیادہ تر لفظ صحیح جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تعالا، علو کی طرف آؤ، اونچائی کی طرف آؤ. جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہا ہلما، جب میرا رب بلاتا ہے تو اونچائی کی طرف بلا رہا ہے نا. میرے رب کا کلام، میرے رب کی ہدایت وہ اونچائی بھی پر ہے نا، ان سب کی باتوں سے اونچی ہے نا، ادھر اونچائی کی طرف تو آؤ، تو میں تمہیں بتاؤں میرے رب نے کیا حرام کیا ہے، کیا حلال کیا ہے. تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. سبحان اللہ.
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on آخری معجزہ.
0: ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بات ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں، اپنا وہ ریسپریشن اٹھا کے کہتے ہیں نعمان، اردو میں بتاتا ہوں، اب مجھے آ کے کچھ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن. میں وہاں بیٹھا صوفے پہ پگھلنا شروع ہو گیا، انسان اس نے 80 سال اپنی زندگی کے قرآن پڑھنے میں لگا دیا، اب کہہ رہے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
4: had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Friday is the holiest day of the week for Muslims, known as Yom al-Jumu'ah. It's a day of community where Muslims gather at the mosque for a weekly sermon and congregational prayer.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001234774 court.org.uk.
9: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे इस कुरान की हिफाजत की है. सुभानअल्लाह, अलअजीबु मिन अलकुरान. इसीलिए कुरान ने जब कहा ना कि कुरान की हिफाजत की गई है, तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र. अल किताब नहीं कहा, अल ज़िक्र कहा. अल ज़िक्र क्या है? याद दहानी. यह भी है, जो चीज याद की जाती है उसको भी जिक्र कहते हैं. अल मज़कूर भी जिक्र है, अल मुदक्किर भी जिक्र है. मस्तर में वो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं. तो कुरान की असल हिफाजत उसकी उसके हिफ्ज के जरिए से की गई.

0: अब हम आ गए हैं एक अगले सेक्शन पर जिसका नाम है इल्तिफात। पहले मैं इल्तिफात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर उसकी कुछ मिसालें कुरान में देखेंगे। आप में से जिनको दिलचस्पी है, इंग्लिश में इस पर एक बहुत बेहतरीन पेपर है जो प्रोफेसर अब्दुल हलीम ने लिखा है, इल्तिफात इन द कुरान, प्रोफेसर अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम अरब अब्दुल के स्पेलिंग मुख्तलिफ करते हैं, ABDEL अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम साहब जो हैं वो अजहर से तफसीरुल कुरान में उन्होंने अपनी PhD की, उसके बाद वो ऑक्सफर्ड मूव हुए, वहाँ पर वो कुरान यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कुरान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं। मेरे जो कॉलीग हैं डॉक्टर सोहेब सईद, जो अजहर से ख़ुद भी पढ़े हुए हैं और फिर उन्होंने भी अपनी PhD यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की है, उन्होंने प्रोफेसर अब्दुल हलीम के तहत की है, तो उनकी तहकीक से भी हम बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वो हमारे एडवाइज़र भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, काफ़ी उम्र के हो गए हैं अब। उनके बारे में एक बात आपको मज़े की बताता हूँ, उस बंदे की उम्र अब तकरीबन 90-92 साल तो होगी कम अज़ कम। उनके घर में गया, मैं लंदन में था, मैं उनके घर गया, कुछ आयत के बारे में उनसे पूछना था, उनसे बात की, तो उनको सांस आने में मुश्किल होती है तो वो मशीन लगा के वो कभी कभी सांस लेते, तो बैठा उनके लिविंग रूम में, पहली दफ़ा मैं गया था तो बात की, तो बातों बातों में मुझे वो कहते हैं, वो उन्होंने अजहर से ग्रेजुएशन की थी 1955 में शायद, या 1957 इस तरह को, उस वक्त से कुरान पढ़ते पढ़ा रहे हैं। और मेरे नज़दीक अंग्रेज़ी में तर्जुमे में हमेशा कोई ना कोई खलल होता है, लेकिन बेहतरीन तर्जुमे में से उनका तर्जुमा है कुरान का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का। खैर, उनके घर में बैठा हुआ था, कुछ बात हो रही थी कुरान के बारे में, अपना वो रेस्पिरेशन उठा के कहते हैं, नौमान, उर्दू में बताता हूँ आपको, अब मुझे आके कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुरान। मैं वहां बैठा सोफे पे पिघलना शुरू हो गया, इंसान इसने 80 साल अपनी जिंदगी के कुरान पढ़ने में लगा दिया, अब कह रहे हैं अब मुझे थोड़ा थोड़ा कुरान समझ में आना शुरू हो गया। सुभानअल्लाह, ये कुरान का एजाज है, जितना इंसान उसको पढ़ता है ना उतना उसको एहसास होता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और जितना नहीं पढ़ता बड़ा एतमाद होता है, जी मुझे पता है कुरान में क्या है। बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, जी हाँ मुझे पता है, पहाड़ों के बारे में बात है और कुछ पिछली कौमों के बारे में कुछ बातें, कुछ कहानियां हैं, पता है मुझे। जिसको जितना कम इल्म होता है उतना उसको एतमाद होता है, ये तो मुझे समझ आ गई, ये क्या बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है पता है बहुत सुन लिया। और जो पढ़ने पे आता है ना, फिर उसको अपनी कम इल्मी का ऐसा अंदाज़ा होता है ना कि मैंने तो बस कतरे पकड़े हैं, मैंने कतरे, कुछ भी नहीं आया मेरे हाथ। तो खैर, इल्तिफात बुक नहीं, आर्टिकल है इनका, इल्तिफात इन द कुरान, इल्तिफात ILTIFAAT, इल्तिफात। अच्छा, मैं इल्तिफात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। इन्होंने वैसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, कुरान की डिक्शनरी भी लिखी है इन्होंने। खैर, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं आपका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको कहेंगे मुखातब, मुखातब का सीगा, तुम, आप, तू, ये सब मुखातब के सीगे। अगर मैं कहूं वो लोग, या वो इधर आए कि नहीं आए, या मैं कहूं मेरी अम्मी ये कह रही थी, ये कौन सा सीगा है? ये गायब का सीगा है। एक है गायब का सीगा, अंग्रेजी में उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, एक है जब आप किसी से मुखातिब हैं वो मुखातब का सीगा है, और एक है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो क्या है? मुतकल्लिम का सीगा है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, एक है मैं और हम, एक है तुम, तू और तुम और आप, और एक है वो, है ना? सो मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। इसी तरह एक है माजी, एक है हाल, एक है मुस्तकबिल, एक है वाहिद, एक है जमा। कुरान क्या करता है, कभी कभी बात कर रहा होगा वाहिद में, मेरा रब कभी बात कर रहा होगा वाहिद में, फौरन गायब की बात, बगैर किसी कॉमे के, बगैर किसी अगले पैराग्राफ के, एक ही आयत के अंदर वाहिद में बात हो रही थी, अब जमा में बात शुरू हो गई, माजी में बात हो रही थी, अब हाल में बात शुरू हो गई, मुतकल्लिम से बात हो रही थी, मुखातब से बात शुरू हो गई, एकदम से जो स्विच होता है ना इधर से उधर फौरन। आजकल फिल्म में मल्टीपल कैमरा एंगल्स होते हैं ना, आप तो फिल्में देखते नहीं, आप इस्लामी लोग, आपको नहीं पता, लेकिन मैं औरों की बात कर रहा हूँ। आप देखते थे जहालत के दौर की बात है, हाँ, फिल्मों के अंदर एक पे कैमरा, फिर एकदम से दूसरे पे कैमरा, फिर एकदम से वहां क्या हो रहा है, फिर वापस इधर कैमरा, फिर वापस उधर कैमरा, फिर वहां मीन वाइल बैक एट द रैंच, यू नो, फिर पहाड़ी पे क्या हो रहा है, फिर यहां घर पे क्या हो रहा है, सीन बदलते रहते हैं ना। तो ये जो फिल्म टेक्नोलॉजी है, इसमें सीन बदलते हैं ऐसे ऐसे, बीच में वक्फा नहीं आता। अब अगला सीन पुलिस स्टेशन के अंदर होगा, उसके लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लें। ऐसा नहीं होता आपको बताए बगैर वो पुलिस स्टेशन में कैमरा पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा लिविंग रूम में पहुंच जाता है, उसके बाद किचन में पहुंच जाता है, उसके बाद बाहर मैदान में पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है ना। और कभी कभी क्या होता है, कहता है हाँ मुझे याद है आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, और फिर कैमरा आपको माजी में ले जाता है, वो माजी की कहानी शुरू हो जाती है एकदम से। ऐसा भी होता है कि नहीं? कुरान ने ये सारी चीज़ें जो आप फिल्म टेक्निक में देखते हो ना, ये सारे असालीब और इनसे ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, और इनको कहा जाता है इल्तिफात। इल्तिफात, और इल्तिफात पे बहुत दिक्कत, बहुत बारीक नज़र रखनी चाहिए जब कोई कुरान पढ़े तो इल्तिफात पे नज़र रखे। कुरान के बहुत सारे असालीब हैं, बहुत सारे उसके स्टाइल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उसकी एक खूबसूरत खजाने जो है ना वो उसके इल्तिफात के अंदर है। तो उसके बारे में आप कुछ, उसकी कुछ मिसालें देखते हैं। ये कुछ हफ्ते पहले मैं सूरत तूर का मुताला कर ही रहा था, पढ़ा रहा था दर्स सूरत तूर का। जन्नत के बारे में बात हो रही है, फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, खुशी खुशी होंगे उसके उस पर जो उनके रब ने उनको दिया होगा, खुश होंगे वो। ये मुतकल्लिम है, ये मुखातिब है, या ये गायब है? खुश होंगे वो जो उनको उनके रब ने दिया होगा। ववकाहुम रब्बुहुम अज़ाब अल-जहीम, और उनको उनके रब ने जहीम के अजाब से, जहीम कहते हैं ऐसा शेर जिसकी आंखें खुल रही हों शिकार को देख के, आग जब भड़क रही हो अपने शिकार को देख के, उस वक्त उसको जहीम कहा जाता है। जहीम के अजाब से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया होगा। ये कब की, किसकी बात हो रही है? हाजिर, मुझे मुतकल्लिम, मुखातब, या गायब? गायब। अगली आयत पढ़ते हैं, कुलू वश्रबू, खाओ और पियो, हनीगन, बेफिक्र होके, खुशी खुशी, बिमा कुंतुम तअमलून, उसकी बुनियाद पर जो तुम करते रहे हो, तुम करते रहे हो। ये कौन सा सीगा है? मुखातब का सीगा है। अगर बात उन्हीं की हो रही होती पीछे वालों की, जिस तरह पहले हो रही थी, तो यहां होता लियाकुलू या याकुलूना व यशरबूना हनीअन बिमा कानू यअमलून, यहां कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। अजीब कलाम है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो बात हो रही है अभी पहली आयत में कि वो बड़े खुश होंगे उस पे जो उनके रब ने उनको दिया होगा, ये अभी की बात हो रही है मुस्तकबिल की बात हो रही है? सबको जाहिर है ना मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो दो बातें नोट करनी है उसके बारे में, वो किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। गायब किसी और के बारे में होती है ना, किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। अगली आयत में जब मैं कहूं खाओ पियो, दो चीजें बदल गई। एक तो मुझसे बात हो रही है, क्योंकि मुखातब कौन है? अब मैं हूं ना मुखातब। जब मैं कहूं तुम खाओ तुम पियो, मुखातब कौन हुआ? मैं। तो एक चीज जो बदली वो उनसे बात हो रही थी, अब एकदम से किससे? मुझसे बात होनी शुरू हो गई। और दूसरा क्या बदला? जब किसी से कहो खाओ पियो, तो क्या मुस्तकबिल में कह रहे होते या हाल में? हाल में। पहली आयत में और मुस्तकबिल, दो तरह की दूरियां। जो और है वो दूर है, और मुस्तकबिल भी क्या है? दूर है। और मुखातब करीब होता है और हाल करीब होता है। मुस्तकबिल तो दूर है, हाल करीब है। अल्लाह ताला ने इस इल्तिफात के जरिए क्या किया, हर अहले ईमान जो आयात पढ़े उसके जहन में एकदम से एक सफर हो, यहां से हिजरत करके मुस्तकबिल की बात हो रही थी जो कितने हजारों साल बाद होगा, जितने करोड़ों साल बाद होगा, और एक लम्हे में मुझे वो उस लम्हे के अंदर ले गया اور مجھے اب یہ خیال اپنے ذہن میں آیا کہ میرا رب مجھ سے خود مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. کس بنیاد پہ؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو. یعنی اب میں اپنے آپ کو مستقبل میں پا رہا ہوں. میں خود ابھی ذہنی طور پہ اللہ مجھے جنت کے اندر لے گیا, اور جنت میں لے ہی نہیں گیا, مجھ سے مخاطب بھی ہے اور مجھ سے میرا رب کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. اور یہی نہیں کہہ رہا کھاؤ پیو, کہہ رہا ہے کیوں کھاؤ پیو, کیونکہ تم کس وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. لیکن کیونکہ میرا ذہن ایک دم مجھے مستقبل میں لے گیا, اور مستقبل میں میرا رب عجیب ماضی کی بات کر رہا ہے, مستقبل میں جا کے میرا رب مجھ سے ماضی کی بات کر رہا ہے, لیکن اصل میں وہ بات کب کی ہے؟ ابھی کی ہے. جیسے میں اس آیت کے سفر سے نکلا تو مجھے اندازہ ہوا مجھے عمل کب کرنا ہے, ابھی کرنا ہے. یا اللہ کیسا وقت کا سفر. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور اس میں سب سے بڑا تحفہ عنایات میں تو وہ نے آپ کو بتایا ہی نہیں. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں, جنت میں کھانے کو تو ہے, جنت میں پینے کو بھی ہے. فرض کریں کہ گریجویشن پارٹی ہے, اسکول میں گریجویشن پارٹی ہوتی ہے نا, تو ٹیچر اسکول کو سجایا ہوا ہے اور سامنے جو ہے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں, اور جو بچے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں کھانا. پرنسپل آ کے ایک بچے کے ہاتھ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا تم پہ بہت فخر ہے مجھے, بہت اچھا کیا تم, کھاؤ خوشی سے کھاؤ, تم نے دل خوش کیا میرا. اس بچے کا کھانا زیادہ ٹیسٹی ہے باقی سارے بچوں سے. کیوں؟ کھانے کی بات تو الگ ہے, کھانے کا ذائقہ اور ہے, وہ جو بات جو شاباش سننے کو ملی ہے نا, اچھا کام کیا تم نے بیٹا, خوب عمل کیا. جب آپ کسی بڑے سے سنتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اوہ, وہ جو ایک وہ انسان کی زندگی بدل, اس کو وہ کھانا بھول جائے گا, وہ الفاظ نہیں بھولیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ابو سے کوئی نرم الفاظ سننے کو ترس جاتے ہیں, بیٹا بہت فخر ہے تم پہ, بہت اچھا کیا تم نے, پراؤڈ آف یو مائی سن. باپ کہنے کو نہیں دیتا, وہ کچھ بھی دے دے گا وہ گالیاں دے دے گا, تنقید کر دے گا, کبھی پیار سے نہیں کہے گا بیٹا بہت فخر ہے تم پہ. اور بیٹا ترس جائے گا ساری زندگی, ایک دفعہ میرا باپ بس کہہ دے, ایک دفعہ کہہ دے زندگی بدل جائے میری. میرا ٹیچر کہہ دیتا ہے, میرا باس کہہ دیتا ہے, میرے دوست کہہ دیتے ہیں, میرے فلاں, میرے ابو نہیں کہتے بس. اور ابو بھی عجیب مخلوق ہیں, وہ باقی سب سے تو کہتے ہیں میرا بیٹا ماشاء اللہ, او ہو ہو یہ, بیٹے سے نہیں کہیں گے. ایک دفعہ بیٹا کمرے میں آ جائے پھر دوبارہ آ گئے تم. اس کو نہیں تسلی دینی. اسی طرح اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہو اور کمپنی میں ہزاروں امپلائی ہیں, ہزاروں ملازم ہیں, اور کمپنی کا سی ای او آ کے آپ کے ڈیسک پہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہے آپ بہترین کام کر رہے ہیں, آپ کو پروموشن دی جا رہی ہے اور آپ بہترین کام کر رہے ہیں. پروموشن کوئی بھی دے سکتا تھا, لیکن مجھے اس نے بیٹھ کے خود کہا نا کہ میں پروموشن دے رہا ہوں آپ کو, وہ اس کی زندگی کا ایک بڑا عظیم لمحہ ہو گیا. یہاں اصل جو نعمت ہے نا جنت کی, جو اصل تحفہ ہے جنت کا ان آیات میں, وہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ خود براہ راست مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تم کھاؤ تم پیو, اچھے کام کیے تم نے. سبحان اللہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, اس کا الٹا آپ سیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کلاس کی مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی میں کلاس ہوتی ہے بڑے سائز کی, جس طرح یہاں بھی ہال ہے نا, کبھی کبھی بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے. اور جب بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے تو پروفیسر بھی ہوتا ہے اور پروفیسر کا ایک اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے, پتا ہوگا آپ. تو اسسٹنٹ کا کام ہے کہ وہ پاور پوائنٹ لگا دے یا کمپیوٹر سیٹ کر دے یا پیپرز کلیکٹ کر لے سب سے, اس کا یہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ باقی اسٹوڈنٹس کی ٹیوٹرنگ وغیرہ بھی کرتا ہے, مدد بھی کرتا ہے ان کی, ٹھیک ہے. اب فرض کریں جو ایک سیکشن ہے کلاس کا, میں کس کی مثال بری دوں, آپ کی دیتا ہوں, ایک سیکشن نے امتحان فیل کر دیا, سوری ایک سیکشن پاس ہو گیا, یس سنیپ. اور ایک یہاں میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ کھڑا ہے, تین ہے, ٹھیک ہے. اچھا میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہے, لیکن اسسٹنٹ کا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ کہ نہیں ہے نا, अब मैं इस तरह मुड़ के कहूँ तुमको मैंने कम सिखाया था, कम मेहनत की थी, इतना अच्छा तुम्हारे साथ असिस्टेंट लगवाया था, जिसको मदद मतलब चाहिए थी, जिसको रिव्यू चाहिए था, क्या क्या कसर नहीं छोड़ी मैंने, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे कि तुमने ये कारनामा दिखाया है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, यू नो तुम लोग तो मुंह लगने के लायक नहीं हो। और फिर मैं कहूं देखा ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को देखो जरा। अब मैं जब अपने असिस्टेंट से बात कर रहा हूं तो मैंने उनसे क्या किया है, उनसे मुंह फेरा है, और ये मुंह ये पता क्या हुआ है, अभी मुखातब से गायब, मुखातब से गायब किया ना, ये मुखातब से जो गायब करना होता है ना, ये गुस्से की अलामत होता है। मैं इतना गुस्से में हूं तुमसे कि अब मैं तुमसे बात भी करने को तैयार, तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह बनू इसराइल से बात कर मुखातब होके, वज़ल्लना अलैकुमुल ग़माम, तुम पर हमने बादल का साया भेजा, वअंज़ल्ना अलैकुम अल-मन्ना वस-सलवा, तुम्हारे ऊपर हमने मन्ना और सलवा नाजिल किया। मुखातिब है या गायब है? कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन अच्छी चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क में दी है। मुखातिब है अभी तक? अब देखना, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती थोड़ी की, वो तो अपने साथ ज्यादती कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती नहीं की, वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे थे। ये कौन सा सीगा है? एक ही आयत के अंदर मुखातब से गायब, ये क्या हुआ? अल्लाह ताला का गुस्सा। इसे कहते हैं तबईद, बुहद से तबईद, दूर होना। कुरान में कभी कभार कलाम के अंदर अल्लाह करीब आते हैं और फिर अपनी नाराजगी कैसे इजहार करते हैं, दूर होके, इसे तबईद कहा जाता है। एक ही आयत के अंदर वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और फिर अगर उनसे बात नहीं हो रही तो उनके बारे में बात हो रही है, और बात हो रही है अपने रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमसे। इसका एक और मज़हर देखते हैं। फर्ज करें, दोबारा क्लास की बात करता हूं, अब आपकी बारी आई, इम्तिहान मैंने सबको दिया, दो लड़के हैं उन्होंने एग्जाम में चीटिंग की और मुझे पता है उन्होंने चीटिंग की, मैंने अभी उनको सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया, एक का नाम है करीम और एक का नाम है जैद, अगर करीम और जैद यहां पर हैं मेरी माफी, एक करीम और एक जैद। अब मैं यहां आके बैठा, मैंने कहा कुछ लोग समझते हैं कि वो जो भी कर लें हमें पता नहीं चलेगा, कुछ लोग समझते हैं मेहनत करें ना करें, अपने वालदैन ने जो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि वो आकर यहाँ तालीम हासिल करें, उसका वो हक अदा ना भी करें, और बाकी सब इस पूरी तालीमी इदारे की, मेरी और इस नेमत की किसी की कदर ना करें और समझते हैं कि ऐसे ही बच जाएंगे। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं। जब मैं कुछ और कुछ और कुछ कह रहा हूँ तो मैं क्या गायब का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ या मुखातिब का? गायब, और गायब से होता यह है कि सारे बेफिक्र हो जाते हैं, कुछ लोग, कुछ लोग, मैं थोड़ी, कुछ लोग। और फिर मैं एकदम से कहूँ करीम जैद इधर आना ज़रा, अभी वो कुछ लोगों से क्या हुआ एकदम से, करीम और जैद फ़कद क़ामत क़ियामतुहुमा, उनकी तो क़ियामत शुरू हो गई। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन उनका नाम मैंने मुखातब किया ना, उन्हें जब मुखातब किया गायब से एकदम से मैं मुखातब पे आ गया तो क्या वो हाँ वो हमारे बारे में बात हो रही थी, हमारे बारे में बात हो रही थी। खतीब भी क्या करते हैं, मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ओए वो गायब से क्या किया उसने, और वो जब मुखातब करता है तो वो जो बैठा हुआ था ना फोन पे खेल रहा था गेम, उसको अब क़यामत का दिन याद आ गया, वो ओए से, वो गायब से क्या है मुखातब। अब यहां देखना, लियकफुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ, कहते हैं कि चले करने दें इन्हें कुफर, करने दें इन्हें नाशुक्री उन तमाम चीजों की जो हमने उन्हें दी है, करने दो इनको, एंजॉय मजे करें, يتمتعوا کرنے دیں انہیں. انہیں کیا صیغہ ہے؟ پھر کہتے ہیں آخر میں وسوف تعلمون فلسوف تعلمون, بہت جلد جان جاؤ گے تم سب, تم سب. سبحان اللہ. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف تعلمون.
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: اللہ تعالیٰ کو کیسا غصہ آتا ہے, تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض, آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں, زمین دو ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ. ایسا غصہ اللہ کا کس بات پر کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ.